0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: like a sunrise.
1: Abbas, Cynthia Abbas. अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और

0: माथली की आवाज GFM 90.4।
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोए GFM 90.4 माथली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 88।

0: प्रिंट की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: रेडार से जहाज के तेजी से रस्तों तब्दील कर दिठो हो के टू एयरवेज जहाज जरूरी मरम्मत ला शारजा वेल हो। जहाज में कैप्टन रिजवान अजीज, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, आबिन एयरक्राफ्ट इंजीनियर समेत अमले जा पंज मानू सवार हुआ। गुम थियल जहाज की गोला लाए समुंड में सर्च ऑपरेशन जारी है। अमन मुआहदे बावजूद अमरीका जा ईरान से बीहर हमला, अमरीकी सेंट्रल कमांड हमलों की तस्दीक कर छी। अमरीकी सेंटकॉम चवण है ईरान अपने हुरमत में गुजरंद टे कमर्शियल जहाजन के निशानो बनाया, जिन जवाब में ईरान से हमला क्या वह। ईरान जो चवण है तो सामूरी इलाके सिरक कशम बंदरगाह पास में धमाकन जवाज बुधा वन।

अमरीका बीहर ईरान ते तेल विकिरो करण ते पाबंदी लगाए छॾी पर डीमीटर चवणा त अपने हुरमत में कमर्शियल जहाजनि खे निशानो बणाइण जो इल्ज़ाम मणींदे अमरीका ईरान ते तेल विकिरो करण ते पाबंदी लगाए छॾी। मफ़ामती यादाश नामे बाद अमरीका 21 अगस्त 2026 ताईं ईरान खे तेल विकिरो करण जी इजाज़त ॾिनी हुई। ईरान पाबंदी खे मफ़ामती यादाश नामे जी भञकड़ी करार ॾींदे चयो आहे त पंहिंजनि मफ़ादनि ऐं क़ौमी सलामती जे तहफ़ुज़ लाइ अमरीका क़दम जो मुनासिब जवाब ॾिनो वेंदो।

0: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH Network, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

गुंडागर्दी ऐं भताखोरी जो दौर ख़तम थी वियो। ईरान झुकण वारो नाहे। अमरीका हमला करे मफ़ामती यादाश्त जे चार शिकन जी भञकड़ी कई आहे। ईरानी पार्लियामेंट जी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाद चयो आहे त अमरीका खे समझण घुर्जे त धमकियुनि ऐं इस्तेहाल वारो दौर हाणे ख़तम थी चुको आहे।

0: सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे चटाबेटी इम्तिहान 2024 जे तकरारी नतीजन खिलाफ वधीक 23 उम्मीदवारनि पारां दाखिल कयल दरख़्वास्त खे ॿुधणी अदालत धुरियुनि खां 5 अगस्त ताईं जवाब तलब करे वरितो। दरख़्वास्त गुज़ारनि पारां सदन बस 4 में ॿीहर चेक कराइण जी सदा। ऐं ठठे वेझो पेर तिरकण सबब केडी वाह में नौजवान ॿुडी पियो। गजी वाह गोड़ अली मोहम्मद कातियार वटि नौजवान केडीअ वाह में ॿुडी पियो, गोला चारी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जी वीडियो एफ एम EDH और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज जी रुखसार सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप सो कि जी जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है। जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ होगा, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना।

प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना और इसी के साथ आगे चलते हैं। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM
3: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, बुड़ी 331 5 5 786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मिल जा रहे हैं. हेलो. ओके. हेलो हेलो हेलो.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं आज?
1: कुर्बान अली कासकेली को बुलाया कोठा जी. गुलाम कासकेली लगे झंडो मरिया.
0: कुर्बान भाई कैसे ठीक ठाक?
1: दुआ लगी भाई अल्लाह या एहसान खुश है. और सर बहन
0: जी मैं बहुत खुश हूँ. मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्राम अति बुद्धि मतो दे आवाज भलो है मजी.
0: अरे वाह क्या बात है. तो फिर गाना सुना दें. कौन सा गाना सुनेंगे?
1: आज आगे कलाम बताएंगे अल्लाह ने जुड़े जाए.
0: ओके सुना दें.
1: वो सोहनी तो तवारा ओ प्यारा पंजी सोह लिखाए मत गई थी दो तक छोड़े चली बार को लने ते सारा प्यारा पंजी भैया जी.
0: ओके जी ये किसका गाना है? सिंगर क्या था?
1: अलन जुने जो.
0: अलन जुने जो
1: जी जी.
0: ओके किसी को डेडिकेट करना है?
1: असा प्यारो दोस्त है अजी सोलंकी नागरी का गुलाम रसूल मरी खाली कलाशारी अजीज जरवार का जेके बुधर का सदन के सलाम मोहब्बत.
0: ओके ठीक है थैंक यू. 03000188. अच्छा ये गाना जिसकी आवाज में आपने कहा उसकी आवाज में तो नहीं मिला लेकिन ये है किसी की आवाज और ये प्ले कर दिया मैंने.

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
2: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576
3: जी हाँ 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: Okay, जी, one more next caller. Hello.
1: हेलो
0: हेलो कौन बात कर रही है
1: यहाँ से? सितारों से नहीं मोहब्बत एक सी होती है हजारों से नहीं. अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल?
1: अल्लाह पाक का करम है दादी. आज सुनाए कैसे? ठीक ठाक है
0: जी. मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी जी, आपका मैं प्रोग्राम सुनता हूँ शौक से.
0: शौक से सुनते हैं, कैसा
1: आपका
0: लगता
1: नाम
0: है?
1: जो आपका नाम जो रखा है मैं एफ एम की रानी मतखाना हूँ नरकाना से.
0: ओके जी, एफ एम की रानी, वाओ अच्छा नाम. मुझे बताएं गाना कौन सा सुना रहे हैं?
1: मैं आपको सुनाऊंगा पहली पहली बार मोहब्बत की है

0: बॉलीवुड कंटेंट है. अच्छा नेक्स्ट कॉल है. हेलो
1: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम. सलाम दुआ कवल कैसे हो?
1: ठीक हूँ.
0: मैं बहुत अच्छी हूँ. गाना है कोई अच्छा सा?
1: है.
0: सुना दे फिर.
1: हम तो मत होश के हम तो कुछ ना कहे होश वालों होश गए.
0: कितने हसी आप कभी नहीं जानते. ये वाला प्ले करें?
1: हाँ ये करो.
0: ओके कर दिया. और कुछ?
1: हाँ अच्छा कभी सिंधी में बात करो. मैं आपकी सिंधी रिकॉर्ड
0: सिंधी में बात करूँ?
1: नहीं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ.
0: सिंधी हिंदी ना है मुखे.
1: सही है.

0: सिंधी अची न थी कीअं ॻाल्हायूं जी
1: इतनी
0: ओके ओके बियो कुछ हलो ठीक है पंहिंजो ख़्याल रखो
1: ओके
0: अल्लाह हाफिज़ इससे ज़्यादा नहीं आती.

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा 3135525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Har din har peher. Zindagi ki leher. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz. अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
4: जी एक अदल ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर,
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज
2: GFM 90.4। कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे
1: अमन मुआहदे बावजूद अमरीका ऐं ईरान जा हिकु ॿिए ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। अमरीकी सरदारी रानी बंदरगाह बंदर अब्बास ते हमले जी वीडियो बि जारी करे छॾी। ईरान जा बि अमरीकी हमलनि बाद अमरीकी अॾनि ते हमला। कुवैत ऐं बहरीन में बि अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी सेन काम मूजिबि अमरीकी फ़ौज ईरान में 80 खां वधीक हथफनि खे निशानो बणायो आहे। ईरानी फिज़ाई दिफ़ा निज़ाम कंट्रोल नेटवर्क सारी रेडार 60 खां वधीक ईरानी फ़ौज जे नंढनि ॿेड़नि खे बि निशानो बणायो वियो आहे। हमला अपना हुरमस में बहरी जहाज़नि ते हमलनि बाद कया विया आहिनि। पासदान इनकलाब चयो आहे त ईरानी हमलनि जे जवाब में अमरीकी अॾनि ते हमला कया आहिनि। अमरीकी हथफनि में बहरीन में अमरीकी पंजनि ॿेड़नि जी मरकज़ पोर्ट सलमान कुवैत में अली इस्लाम फिज़ाई अॾे समेत 85 हथफनि खे निशानो बणायो आहे। हिकु अमरीकी ड्रोन बि तबाह कयो वियो आहे।
2: गुंडागर्दी ऐं भताखोरी जो दौर ख़त्म थी वियो। ईरान झुकण वारनि मां नाहे। अमेरिका हमला करे मुफ़ाहमती यादाश्त ते 4 शिकनि जी भञकड़ी कई आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर बालिक काले बाफ चयो आहे त अमेरिका खे समझण घुर्जे त धमकियुनि ऐं इस्तेहसाल वारो दौर हाणे ख़त्म थी चुको आहे।
1: शारजा खां कराची ईंदे गुम थियल निजी एयरवेज जे कार्गो जहाज़ जे फिज़ाई ऐं बहरी सर्च ऑपरेशन जारी। कार्गो जहाज़ जे किरियल मुबैना हंध जी निशानदाही बाद गोला वारो ऑपरेशन तेज कयो वियो। पाक बेरिया जा ॿ बहरी जहाज ऐं हिकु ART जहाज़ बि गोला में शामिल। पाक बेरिया जो जदीद जहाज़ बि गोला में मसरूफ़। मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ऐं मर्चेंट वेसल बि गुम थियल जहाज़ जी गोला में रुधल। कार्गो जहाज़ सां कराची खां 155 नाटकिल मेल जे फ़ासिले ते राब्तो काटा थी वियो हो। कार्गो जहाज़ में अमले जा 5 ॼणा सवार हुआ। गुम थियल जहाज़ जे मावन पायलट फैसल महमूद जतोई जो तालुक नवा जतोई जे भर वारे ॻोठ ठोड़ा शरीफ़ सां आहे।
2: ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो मड़ आख़िरी रस्मनि जी अदायगी लाइ ईरान खां इराक मुंतकिल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे रोज़े में जनाज़े निमाज़ अदा। हज़ारे माण्हुनि जी शिरकत। शहीद आयतुल्लाह खामनाई जे मड़ खे नजफ़ पहुचण ते ईरानी फोर्सिस सलामती बि पेश कई। शहीद आयतुल्लाह खामनाई जे मड़ जी तदफ़ीन सुभाणे मुशहद में कई वेंदी।
1: वरी वज़ीर मुराद अली शाह जो क़ौमी असेंबली जी मनसूबाबंदी बाबति पार्लियामेंटी कमेटी सां इजलास। सूबाई वज़ीरनि जी शिरकत। रस्तनि जे 5 वॾनि मनसूबनि जो जाइज़ो वरितो वियो। वफ़ाक़ी तरक़ियाती प्रोग्राम तहत सूबे जे 5 अहम रस्तनि जी तामीर जो कमु जून 2027 ताईं हदफ़ मुक़ररु। मुराद अली शाह चयो त समूरा रस्ता मुआशी मार्ग आहिनि। तरक़ियाती स्कीमनि खे वक़्त ते मुकमल करण लाइ फंडनि जो इंतज़ाम अंटर आहे। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मासन नक़वी जी न्यूयॉर्क में चीनी मनसब लिंग ज़ेफेंग सां मुलाक़ात। अंदरूनी सलामती वारनि मामलनि में भाईवारी वधाइण ते इतफ़ाक़ बावजूद मैनेजमेंट गैर कानूनी इमिग्रेशन मंशात जे ख़ात्मे लाइ मामलनि खे हथी ॾियण ते ज़ोर ॾिनो वियो। मासन नक़वी जो दहशतगर्दनि जी फंडिंग रोकण जी ज़रूरत आहे। फंडिंग में मुलिस मुल्कनि ख़िलाफ़ गॾिजी कमु करणो पवंदो। चीनी घर वज़ीर चयो दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान जी क़ुर्बानीनि खे क़दुरु जी नज़र सां ॾिसूं था।
2: इंसानियत जे आलमबरदार अब्दुल सत्तार एदीअ जे विछोड़े खे 10 साल मुकमिल। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां अब्दुल सत्तार एदीअ खे भेटा पेश। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त अब्दुल सत्तार एदी ख़िदमत ख़ल्क़ ऐं इंसानियत जो रोशन मिसाल हो। संदसि इंसाननि जी ख़िदमत वारो दर्स सदाई रोशन रहंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त अब्दुल सत्तार एदी जूं समाजी ख़िदमतूं रोशन बाब आहे। नौजवान नसल खे एदीअ जे किरदार मां सिखणु घुर्जे।
1: सिंध हाई कोर्ट पीएस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे गॾियल चटाभेटी इम्तिहान 2024 जी तकरारी नतीजनि ख़िलाफ़ वधीक 23 उमेदवारनि पारां दाखिल कयल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। अदालत धुरनि खे 5 August ताईं जवाब तलब करे वरितो। दरख़्वास्त गुज़ारनि पारां सदन पर्चा पोइ ॿीहर चेक कराइण जी सज़ा।
2: खैरपुर डिस्ट्रिक्ट बार जे वकीलनि पारां प्रिया कुमारी समेत मुगवी ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट बार खैरपुर जे वकीलनि मासूम ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ बार आफ़ीस साम्हूं एहतजाज कयो। वकील अॻवाननि जो चवणु आहे त मासूम प्रिया कुमारी समेत अॻवा 12 ॿारनि खे फौरी तौर बाज़ियाब करायो वञे। मासूम प्रिया कुमारी समेत अगवा थियल 15 बारन के फौरी तौर
1: कोट खत्म न थी पानी चोरी पानी कोट खिलाफ़ आबादगर एहतजाज 15 वाज पुथरी के आबादगर पानी कोट खिलाफ़ एहतजाज आबादगर वाह में लगल गैर कानूनी झटा भी हटाए छ्या पानी विकरो कर आपाशी अमले खिलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो
2: सहलकार जो पोरे ते तशद लोडर रक्षा जे टायर मां हवा भी कढी छॾी पुलिस सहलकार मंजूर बंगलाणी जो मोड़ ते पोरे ते तशद कयो पुलिस सहलकार खांगी ड्रेस में हो तशद दौरान शहरी गॾु थी विया अहलकार खिलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो
3: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4
5: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125257 86
6: जी हा 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़

0: تهذيب وثقافة الساسجي سلكي مهمان.
1: तो मजे करेंगे पूरे पूरे तीन बजे तक. ओके जी, बहुत ज्यादा वाले गाने होंगे मजे मजे के. और साथ साथ आप लोगों के साथ गपशप होगी, और उसके अलावा आप लोगों के लिए वाइब एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बातें होने वाली है. तो बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं. बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे. ऐसी बहुत सारी एंटियां मियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही हो, यानी कि लंच बनाने के दौरान तो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए. आपको कहेंगे वेरी वेली गुड आफ्टरनून. साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला. बिकॉज आली रे आली सुधराली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्के समाय लाने के लिए. तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समाय लाते हैं. यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं. आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ब्यूटीफुल सीनाद के साथ. तो बहुत प्यारी सीनाद हमारी लिस्ट में मौजूद है. हम ऐसा करते हैं कि नाच सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते बता कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है. सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125257 86।
5: जी हां 2315257 86।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं जरा आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ खूबसूरती को बढ़ाने की बातें।

तो जनाब बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि खूबसूरत होना जो है ना वो हर किसी का एक ख्वाब होता है, सपना होता है। हर किसी को ये लगता है कि भाई मैंने भी खूबसूरत होना है। ज्यादातर देखा जाए तो हर कोई एक एक इंसान जिसको भी उठा ले वो सारे लोग बहुत ही खूबसूरत होते हैं। बात यहाँ से बिगड़ती है कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते हैं, आपको वो प्रोडक्ट्स नहीं मिलते जो आपको लगाने चाहिए। तो भाई ये जरा जो चीजें हैं ना, आप धूप में काम करते हैं या फिर आपको सही वाले प्रोडक्ट्स की समझ नहीं होती, तो उस मामले में आपकी जो स्किन है ना वो खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आप मर्द हंस रहे हैं

सवाल पुछो आहे त मतलब सवाल थोड़ो ता समझो असा पानी जिंदगी में खोड़ एड़ा कम कंदा आयो यानी कि पास लाइफ में अगते हली करे जको ना मतलब असा पेरा हुए कम कया है ठीक है अगते हली करे ओ ओए कम जके सेम असा पानी जिंदगी में कया से अगर ओही कम को...

चीजों आप सुन रहे हैं वाइट एज एंटी एशियन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. और आप इस्तेमाल कौन सा प्रोडक्ट करें मुझे बताइए जल्दी से. और हमारे साथ हेलो सिद्रा कैसी हो. मैं अहमद मुस्तफा फ्रॉम मोरो. कोई शादी वाला सॉन्ग प्ले कीजिएगा ठीक है. ये गाना आपके नाम करते हैं. बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. और हमारे साथ हैं जी इरम कहती है प्यारी दिलबर दोस्त प्लीज मेरे मुमताज मुलाई तू पान मासो पारी. ओके लगाते हैं आपके लिए. प्रिंस अहमद.

0: ईरानी फिज़ाई दिफ़ा निज़ाम कंट्रोल नेटवर्क्स साहिली रेडार्स ऐं 60 खां वधीक ईरानी फ़ौज जे नंढनि ॿेड़ियुनि खे निशानो बणायो वियो आहे। हमला आबना हरमूज़ में बहरी जहाज़नि ते हमलनि बाद कया विया आहिनि। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त ईरानी हमलनि जे जवाब में अमेरिकी अॾनि ते हमला कया आहिनि। अमेरिकी हदफनि में बहरीन में अमेरिकी पंजे ॿेड़ियुनि जे मर्कज़ पोर्ट सलमान कुवैत में अली सालिम फज़ाई अॾनि समेत 85 हदफनि खे निशानो बणायो वियो आहे। हिकु अमेरिकी ड्रोन बि तबाह कयो वियो आहे।
1: अमरीकी हमलनि बाद मफ़ाम जा कुझ हिसा गैर मुयसर थी विया आहिनि। ईरान क़ौमी सलामती ऐं ख़ुदिमुख़्तियार रहंदो। ईरान अब्बास इराक़ चयो आहे त तेल जे विकिरे ते पाबंदियुनि सां मफ़ाम जा कुझ हिसा गैर मुयसर थी विया आहिनि। ईरानी हमले ते अमरीका अॾनि खे निशानो बणाईंदा। ईरानी पार्लियामेंट जो स्पीकर मोहम्मद बाकिर काली बाफ़री जो दौर ख़त्म थी वियो। ईरान झुकण वारनि मां नाहे।
0: अमेरिका ईरान जी हिक ॿिए ते हमलनि बाद चीन ऐं कतर मुफ़ाहमत लाइ सरगर्म। ॿिन्ही मुल्कनि जो धुरियुनि खां हमला रोकण जो मुतालबो चीनी परे वज़ारत विच ओभर में जंग जे

0: This time chat is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Dia Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मुफ़ाहिम जा कुछ हिस्सा गैर मुयसर थी वया। ईरान कौमी सलामती ऐं खुद मुख्तियारीअ जो दिफ़ा कंदो रहंदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त अमरीकी हमलनि लबनान में इसराइली कार्रवाई ऐं तेल जे विकरे ते पाबंदियुनि जा मुफ़ाहिमत जा कुझु हिसा गैर मुयसर थी विया आहिनि। ईरान हमले ते अमरीकी अॾनि खे निशानो बणाईंदा। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर चयो आहे त गुंडागर्दी ऐं भत्ताखोरी जो दौर ख़त्म थी वियो। ईरान झुकण वारनि मां नाहे।
1: अमरीका ईरान जी इक्वेती हमलनि बाद चीन ऐं कतर मफ़ामत लाइ सरगर्म। ॿिन्ही मुल्कनि जे धुरनि खां हमला रोकण जो मुतालबो। चीनी परॾेही वज़ारत विच ओभर में जंग जी ॿीहर शुरूआत कंहिं जे मुफ़ाद में न हूंदी। धुरियूं तकरार जे हल लाइ ॻाल्हियुनि तरफ़ मोटनि। कतरी परॾेही वज़ारत वाहिद रस्तो आहिनि।

0: फिजाई ऐं बहरी सर्च ऑपरेशन जारी। कार्गो जहाज जे किरियल मुबैना हंध जी निशानदेही बाद ॻोल्हा वारो ऑपरेशन तेज कयो वियो। पाक बेरिया जा बहरी जहाज ऐं हिकु एटीआर जहाज बि ॻोल्हा में शामिल। पाक बेरिया जो जदीद जहाज बि ॻोल्हा में मसरूफ़। बेरी टाइम अली
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज़ हैं सारे
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

0: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: Yeah!

फाउंडेशन के कायम का ऐलान किया गया, जिसके तहत दुनिया के अमीर या गरीब हो, दुनिया की कोई भी मुल्क हो, अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, शाम, ईरान, भारत, बांग्लादेश हो, उसमें ये एम्बुलेंस

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दहशतगर्द वेढ़े वायतालीह जवान शहादत माणी। डीजीआईएसपीआर मूजिब गुजरियल चार डी दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जा टे वाकिया थिया। दहशतगर्द के हमलन में मजमूई तौर 27 पुलिस एहलकार शहीद थे। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में मजमूई तौर 54 दहशतगर्द मारजी वह। पहरियों वाकियो 4 और 5 जुलाई के विच वाली रात जो पेश आयो। ज़ियारत में दहशतगर्द पुलिस चौकी से हमलो कयो। ज़ियारत में पुलिस फितनतुल ख्वारिज के 15 दहशतगर्द मारियो। बलोचिस्तान में 3 ऑपरेशन दौरान 42 जवान शहादत माणी।
2: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're Lip Island people.

0: As I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
1: मुझे ख्याल में ईरान सां जंगबंदी खत्म थी चुकी आहे. ईरान सां ॻाल्हियूं वक़्त जो ज़िया आहिनि. ईरानी कूड़ा ऐं ज़हनी बीमार आहिनि. टीमूं चाहिनि त ॻाल्हियूं जारी रखी सघजनि थियूं. ईरान में पंहिंजो कमु मुकमल कंदासीं. अंकरा में ॻाल्हाईंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त ईरान बहिरी जहाज़नि खे निशानो बणायो. अमरीका जवाबी हमला कया. स्पेन फज़ूल मुल्क आहे, तालुक रखण नथो चाहियां. सदाई नेटो जो दिफ़ा कयो. ज़रूरत वक़्त नेटो मदद लाइ न आयो. नेटो मां ख़ुशि न आहियां. अमन वायदे बावजूद

0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हाँ, 3315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315 2575786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: आओ सब्जी वालों, ताजी सब्जी खाओ, अदा गोश्त महंगो, मुर्गी महंगी, मच्छी महंगी, ताजी सब्जी खाओ, सेहत बढ़ाओ। आओ सब्जी।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो दहशतगर्द हमलनबाद ऑपरेशन चार दिन दौरान 54 दहशतगर्द मारजी वा दहशतगर्दन से वड़ंदे 42 जवानन शहादत मानी। DGISPR मूजिब गुजर चार दिन दौरान बलोचिस्तान जियारत मांगी डैम ए दालबदीन वारन इलाकन में दहशतगर्दी जा टे वाकिया थे जै दौरान 42 जवानन शहादत मानी। शहीद पुलिस अहलकारन जो मजमूई अंग 27 थी वो। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में मजमूई तौर 54 दहशतगर्दन के जन्म भीड़ो कयो वियो आहे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त दहशतगर्द हमला भारत कराए रहियो आहे। पाकिस्तान जा दुश्मन नथा चाहन त बलोचिस्तान तरक्की करे। फितनतुल ख्वारिज जो इस्लाम सां को भी वास्तो नाहे। रियासत पाकिस्तान जो चिट्ठो ए वाज़े मौक़िफ़ आहे त दहशतगर्दन ऐं संदन सहूलतकारन जे

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: BFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज अपना शहर अपना